किसान सत्य साई प्रेम साई चाहिए। श्री बाबा सत्य बाबा प्रेम बाबा चाहिए।